एक तो इसका की इता में एक क एक तो इसका की इता में एक क एक तो इसका की इता में एक क पत्सो सोक आग नमों बासी ए वो सी नकब इया का ए मुआ Ibusi inakbu iya ka imua. Ibusi inakbu iya ka imua. Petusuk ak namun basi.